बाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्व भव चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी

अवधपुरी रघुवंश में फूटी के कई सीजा रानी अवधपुरी रघु

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

अमरो नाथो की अमरो कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

आसाराम कहत हैं भाई।

करो हरि जगत जगतार भजन करो हरि जगत जगतार भजन।

0: रेल खंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में खेती का काम करके, या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
1: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
1: बिल्कुल। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके, बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
0: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
1: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
3: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है, और बुंदेलखंड रीजन जो ये झांसी, ललितपुर, आपका जालौन, ये एरिया है, ये खासकर मटर, चना, उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
3: जी।
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
3: जी।
2: तिल का तेल है
3: जी।
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, क्योंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
3: जी, जी।
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
3: बिल्कुल सर।
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
3: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
3: जी।
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
3: जी।
2: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
3: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जिसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
3: जी।
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके सर्व स्वावलंबन में आए
3: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
3: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है, तो उसका हम उपयोग गाँव में तमाम चीजें होती हैं
3: जी।
2: जैसे बेसन है
3: जी,
2: दलिया है, यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है।
3: बिल्कुल सर।
2: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
3: जी,
2: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती हैं, उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें। फार्मर FIG जो है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप FPO होता है
3: जी।
2: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके के हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं। लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है?
2: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
3: जी।
2: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए गाँव में लोगों को। इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं, जिसको कि गाँव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
3: जी।
2: और जो चीजें हैं आज के युग में जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
3: जी,
2: उसमें चीजें हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश

0: करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है।
1: बिल्कुल,
0: अगर चावल की बिनाई कर ले, बाई बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले, दाल जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले, ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चना के रूप में यूज करे, सेकंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी,
0: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है, वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है। जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर।
0: कोई चीज बिकती कब है? जब क्वालिटी होती, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले
1: जी,
0: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर।
0: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर।
0: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर किया जाए, इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है। तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है। अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
1: हैं
0: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
1: जी।
0: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपकी क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
0: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
0: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: बहुत बहुत सर धन्यवाद।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है। तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही है। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथी, अब हमारा समय होता है ऐसे कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
2: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। फोन नंबर है हमारा
4: 9919207749।
3: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात। तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

आजीविका जाने सुने और अप...

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे है कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके। ऐसे किसानों को अपने खेत

0: में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटेड जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा। और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे।

0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे

0: देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं? वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है, ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत, प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिएगा।
1: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं।

0: और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI, वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है 9425141726।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बात ही अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कौनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आती तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा देंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। हाँ। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहा।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही हैं?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हो कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कौन है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम
1: हुआ? पे वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब के थे। जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती। 10-5 रुपया दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरफ से, इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाता रहा।
0: हाँ, तो कोई खेलवे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, बस ये खेल खेलते थे। और क्या?
0: अच्छा,
1: चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा का
1: साउंड को मुझे चपेटा खेल।
0: अच्छा,
1: जी खेल रहे।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत, तो एक आध गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में था।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते?
1: नहीं,
0: पहले तो गाती नहीं हो आप?
1: अबे यार, भूल गए आप तो। बुढ़ापो ऐसे कछु नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: नहीं, बुढ़ापो काहे नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाते हैं?
1: कोनो नहीं गाते हैं।
0: आप गाते नहीं? अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियन को अब जाने कहाँ कहाँ गई। को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके। कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते
0: कभी, मिल जाते इकट्ठे हो जाते,
1: कभी कभी इकट्ठे हो जाता। खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता,
0: तो अच्छा लगता
1: है।
0: अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे? मतलब पैरत का कहा, कपड़ा कौन कौन से चलाते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी हती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिर आकर नहीं मिली तो बिस्कुटे पहन लेते।
0: हाँ,
1: ये पहन लेते और हम तुमने फिर आके दे रही तो वे पहन लेंगे बस, और ये ही पहरा होता।
0: अच्छा जी, मतलब कोनो अलग से नहीं?
1: हाँ, कोनो अलग से नहीं है।
0: तो अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भैया थी।
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
0: बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखो तो?
1: हाँ,
0: पहले से देखो तो?
1: हाँ, नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते।
0: हाँ,
1: पहले ना को मोड़ी देखा तो ना को मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: देख से तो आते ही हमारे बाप माताई ने 8-9 साल के साथ हम 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा,
1: तो जिन जिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने। बोली तो मैं 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका। उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे।
0: अच्छा,
1: तो वही बताई नहीं होते कहीं में करता।
0: 500 रुपया में ब्याह होगा?
1: नहीं, सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है के उन लोगों ने और दादा दे दे, वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
0: अच्छा, अच्छा।
1: बड़े बड़े सेठ लोग
0: तो
1: सही से वहाँ ब्याह होगा।
0: अच्छा, जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल गए? राधापुर में भाई है
1: ना? हाँ, राधापुर
0: ससुराल है। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्म

0: आपके भाई हैंगे जैसे पहले दिन तेल मंडप
1: पहले पहले मंडप तेल भाव फिर मंडप भाव फिर टीका भाव।
0: अच्छा तीन ही दिन को भी आओ
1: तो? हाँ तीन दिन को हो
0: तो बरात तीन दिन मिली रही थी
1: नहीं एक ही दिन नहीं तीन दिन मिली रही थी बरात
0: तेल वाला
1: दिन आ जाती नहीं आते टीका के दिन।
0: अच्छा।
1: और फिर भावर मावर बराती फिर वो देना थोड़ी जाती बरात दूसरे दिन जाती
0: दूसरे दिन जाती। तो जब जयमाला डरी तो आपकी
1: जयमाला नहीं डरी
0: कैसे हुआ तो पहले
1: भी हम आज जयमाला नहीं डरी बहन हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे हाँ अरे खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा।
1: और जो टोम जो होट पर लाल बाको ब्लाउज।
0: अच्छा
1: जो सब पहला तो मतलब लड़का मड़वा घाला ना सो चावल मार दे।
0: अच्छा चावल जी का घाले जाता आपको कुछ बताओ
1: नहीं बता हमें नहीं बता।
0: अच्छा चावल को कुछ बताओ
1: मड़वा के नाचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दो सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर
0: भावरे काका चढ़ा तो आपको
1: हमें पेजना चढ़ी थी एक किलो के वो खंगवज्जा
0: एक किलो की पेजना
1: हाँ एक किलो के पेजना हाँ। खंगवज्जा
0: वो
1: जो इतने पैर थे पहने थे
0: बाजू बंद
1: हाँ, हाँ। बेचड़े थे।
0: अच्छा तो अब रखे
1: हो आप धरे बहन की बात
0: अच्छा
1: छह लड़का होगा छह लड़का ने

0: कल मार दे सामने
1: चल। फिर उसके बाद
0: बस फिर बाहर चलो गो लड़का, फिर पंगत मंगत होने लगी, पंगत मंगत भाई, फिर चढ़ाओ मढ़ाओ चढ़ो, फिर
1: गाँव रहे कहाँ चढ़ो तो आप
0: हमें पेज ना चढ़ी थी 1 किलो के वो खंगवज्जा,
1: 1 किलो की पेज ना,
0: हाँ 1 किलो की पेज ना खंगवज्जा, वो जो इतने पैरत थे पे नहीं थे
1: बाजू बंद,
0: हाँ बेचड़े थे।
1: अच्छा
0: तो अब रखे हो आप? हाँ अब धरे बहन की बात।
1: अच्छा
0: छह लड़का होगा, छह लड़का

0: कल मार दे सामने
1: चल। फिर उसके बाद
0: बस फिर बाहर चलो गो लड़का, फिर पंगत मंगत होने लगी, पंगत मंगत भाई, फिर चढ़ाओ मढ़ाओ चढ़ो, फिर
1: गाँव रहे कहाँ चढ़ो तो आप
0: हमें पेज ना चढ़ी थी 1 किलो के वो खंगवज्जा,
1: 1 किलो की पेज ना,
0: हाँ 1 किलो की पेज ना खंगवज्जा, वो जो इतने पैरत थे पे नहीं थे
1: बाजू बंद,
0: हाँ बेचड़े थे।
1: अच्छा तो अब रखे हो आप,
0: हाँ अब धरे भी।

काव्य धारा। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। और कप्ताएं कार्यक्रम में अपन आज सुने कुमार विश्वास जी की लिखी भाई कप्तान को। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ देर ना करत भय सुनते हैं अपन एक कविता को जी ये कुमार विश्वास जी लिख रहे हैं कि उनकी खैरों खबर नहीं मिलती, उनकी खैरों खबर नहीं मिलती, हमको ही खासकर नहीं मिलती, शायरी को नज़र नहीं मिलती, शायरी को नज़र नहीं मिलती, मुझको तू ही अगर नहीं मिलती, रूह में दिल में जिस्म में दुनिया में ढूंढता हूँ मगर नहीं मिलती। लोग कहते हैं रूह बिकती है, मैं जहाँ रहता हूँ उधर नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सुजा देखो कितनी बढ़िया कविता लिखी है और ये कविता को लिख रहे थे कुमार विश्वास जी। तो दोस्तों, अपन ऐसी कविताएं आगे भी सुने और कप्तान को आनंद लें। दोस्तों, एक क्रम में कायना अपन एक बढ़िया से गीत को सुन लें और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आ दोस्तों, सुनते ही बढ़िया से गीत को जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी।

बिल्कुल दोस्तों, राम नाम केबू करे धरे रहो मन धीर, ओ कारज वेई समार हैं सु कृपा संत रघुवीर। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवार जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाऊ थे, और कार्यक्रम में जो अपन कप्तान को सुन रहे थे सो कप्ता को सुना थे, जब कप्ता लिखी है कुमार विश्वास जी ने। सो दोस्तों आओ इनकी अब दूसरी कप्ता को अपन सुना थे कि कुछ छोटे सपनों के बादले, कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे, वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुद जवानी, हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने का जाने, हार जीत तय करती है वो, आज कौन से घर ठहरेगी, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डहर ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होंठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लालच बहाने, जिनकी जिद के आगे सूरज मोरपंख से छाया मांगे, उनके भी दुर्मय, उनके भी दुर्मय इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो देखो कितनी बढ़िया जा कविता जो अपन ने सुनी है, एक कविता को लिखी है थी कुमार विश्वास जी ने। सो आओ दोस्तों अब कुमार विश्वास जी की ये कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं और वो कविता को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो अपने रेडियो माता दीन के संग में। अब देखो कुमार विश्वास जी का लिख रहे कि खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, हम पे एहसान कर रही हो ना, जिंदगी हसरतों की मैयत है, जिंदगी हसरतों की मैयत है, फिर भी अरमान कर रही हो ना, नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही है ना। जी हाँ दोस्तों, कि नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही हो ना, हमने समझा ये प्यार पर तुम

0: तो जान पहचान कर रही हो ना। देखो कितनी बढ़िया कविता अजा भैया जी ने लिखी है, कुमार विश्वास जी ने। और एक कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता खुआंगे सुनत हैं। सो दोस्तों आप और ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। अब देखो भैया जी अपनी अगली कविता में का लिख रहे कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ, जब भी मुंह ढक लेता हूँ, तो देखो आगे का लिख रहे, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों के छांव में, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छांव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में।
1: बहुत अच्छी बात
0: कि कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होंठों पर लिखना, यानी सारी गीत हृदय की, यानी सारी गीत हृदय की मीठी सी चूठों पर लिखना। जैसे चुभ जाता है कोई कांटा नंगे पांव में, ऐसे गीत उतर जाते हैं मेरे मन के गांव में। पलकें बंद हुई तो जैसे, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन मन सो गए हो, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्मान सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए। जैसे धूप चुनरिया ओढ़ आ बैठी छांव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। तो देखो दोस्तों भैया जी कितनी बढ़िया कविताएं लिख रहे हैं और इन कविताओं को अपन सुन रहे हैं। आओ एक क्रम में उनकी एक और कविता खुआंगे सुनत है। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। तो देखो अब भैया जी आगे का लिख रहे हैं कि जाने कौन नगर ठहरेंगे, जाने कौन नगर ठहरेंगे, कुछ छोटे सपनों की खातिर, कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे। जाने कौन नगर ठहरेंगे, वहीं प्यास के अनगढ़ मोती, वहीं धूप की सुर्ख कहानी। तो देखो भैया जी ने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं और कप्तान के संगे संगे अपन कह रहे हैं कि माता दीन भैया आप केवल कप्तान की धुन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। तो दोस्तों आओ एक और कविता को सुनने के बाद फिर अपन मनोरंजन की ओर चलें और मनोरंजन में सुने अपन बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लें। तो देखो अब भैया जी कुमार विश्वास जी आगे का लिख रहे हैं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल एक ऐसा तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। जो धरती से अंबर जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। जो शीशे से पत्थर तोड़े, जो शीशे से पत्थर तोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मुड़े, उसका नाम मोहब्बत है। पनाहों में जो आया हो, पनाहों में जो आया हो, तो उस पर बार क्या करना, पनाहों में जो आया हो तो उस पर बार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पर फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमकस में है, जो भी मालूम गहराई तो दरिया पर क्या करना, जो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। बस्ती बस्ती घोर उदासी, बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल बिक गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। इस

धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भुलापन है, एक मेरा दीवानापन। अब देखो ये आगे क्या लिख रहे कि तुम्हारे पास हूं लेकिन, तुम्हारे पास हूं लेकिन जो दूरी है समझाता हूं, तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझाता हूं, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्ही को भूलना सबसे जरूरी है समझता हूँ। बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया हवाओं के इशारों पर, मगर मैं बस नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। देखो कितनी प्यारी बातें भैया जी ने लिखी हैं। सो अब दोस्तों देखो आप उन्हें कह रहे हो कि माता दिन भैया ब्लड टीम से कप्तान में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे, सो आओ सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

0: बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में तू आकर भूला ईश्वर की डगरिया। देखो कितनों प्यारो जोगी तपन सबजन ने सुनो है गीत को, आनंद लो है ये गीत को गा रहे थे भैया राजेंद्र सिंह जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम कविताएं में आप सब जन को जो कविताएं कैसी लगी। अब दोस्तों जो कविताएं कार्यक्रम आप सब जन ने सुनो है कविता कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो रहा है। तो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में यही बेरा पे। तो जब तक के लाने नमस्कार।
1: काव्य धारा

जलवायु मृदा को स्वच्छ कर, जलवायु मृदा को स्वच्छ कर, जीवन स्वच्छ बनाएंगे, जीवन स्वच्छ बनाएंगे, जलवायु मृदा को

0: देखें आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी। हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ हम कर लो विवेक।
0: और

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून।

गए। कहने लगी अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है, पक तो आने से पहले ही ढल जाती मैं। वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

0: देखें आप,
1: हो हाथ मैले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
1: हो हाथ मैले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक।
0: और